एक पल रुककर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझा।

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। मातृ तो बड़ी भोली है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया।

किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यो सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आज 5 तारीक जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौ लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ पर्यटन विकासमा सिक्किम सरकारको पहल। यसबारे जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सिक्किम सरकारको पर्यटन विकास निगमका अध्यक्ष श्री लुकेन्द्र रसाइली। र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0359221171 कल गर्न सक्नुहुनेछ। दिन अनि समय पुनः एकचोटि, आज 5 तारीक जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर छ 0359220171। सूचना पूरा भयो।
4: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
5: गत 30 मईदेखि 28 जुन 2026 बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
4: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
5: 1 जुलाई 2026

आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता अब सुन्नुहोस् आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र अनि आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवा सिलङ केन्द्रबाट हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सिंह कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
5: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
5: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसा।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति

0: सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
0: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया।

0: रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says U.S. pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
2: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the 4-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej, and Sarigam GIDC modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
3: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yog worldwide.
3: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

0: विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी कार्यक्रम के लिए अभी आवेदन करें। अनुभवी प्राध्यापक, आधुनिक सुविधाएं और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण सब एक ही परिसर में। यूजी और पीजी प्रवेश हेतु सीयूईटी अनिवार्य है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मई से 10 जून 2026 तक। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए www.cus.ac.in पर जाएं।
1: यो सुन्नुहोस् लाइभ फोन इन कार्यक्रम सम्बन्धी एक सूचना। आज 5 तारिक जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 प्रसार गरिने ग्रामीण कार्यक्रममा हामी लिएर आउनेछौं लाइभ फोन इन कार्यक्रम। विषय रहनेछ पर्यटन विकासमा सिक्किम सरकारको पहल। यसबारे जानकारी दिन भनी हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ सिक्किम सरकारको पर्यटन विकास निगमका अध्यक्ष श्री लुकेन्द्र रसाइली र यस विषयमाथि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा भए हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0359220111 कल गर्न सक्नुहुनेछ। दिन अनि समय पुनः एकचोटि आज 5 तारिक जुन 2026 शुक्रबार साँझ 6:05 अनि फोन नम्बर छ 0359220111। सूचना पूरा भयो।
2: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
3: गत 30 मईदेखि 28 जुन 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इनुमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
2: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
3: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
2: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
3: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
1: आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट श्रोताहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ताजेतरानी, नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। प्रिय श्रोता, अर्को गीत छ चलचित्र एनिमलबाट गायक कलाकार विप्राकको आवाजमा।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप इसे सुन रहे हैं 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आशिरेखा क्रिस्टल वॉइस। और फिलहाल ये वक्त है दिल का मेल बॉक्स का, यानी अपने दिल के मेल बॉक्स में भेज दीजिए वो गीत लिखकर जो आप सुनना चाहते हैं। कोशिश रहेगी

कि आज किसी न किसी का गीत तो जरूर ऑन एयर हो ही जाए बढ़िया से, और सबका ना भी हो पाया तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे की पसंद सुनना भी तो मजेदार लगता है ना। तो सुनकर तो देखिए अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9868686853 यानी 9868686853, और ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। या का मतलब पता है ना, एक ही चीज करिए काफी है और एक ही बार करिए काफी है, एक ही मैसेज भेजेंगे तो चलेगा। मैं आपका नाम जरूर कोशिश करूंगी शामिल हो ही जाए, और 10 बार भेजेंगे ना तो फिर मैं आपका नाम शामिल नहीं करूंगी, ये भी याद रखिएगा। कोशिश करिए सिर्फ एक मैसेज भेजें। अब मैं कुछ मैसेजेस हमें पहुंच चुके हैं उन्हें शामिल कर लेती हूं, और फिर आज का पहला गीत इस सफर का जरूर सुनाऊंगी। रजौनी जिला महोबा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड से हमें उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बाघेल और पूरे परिवार ने मैसेज लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा ने मजनू का टीला से, और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेजा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना का मैसेज मिला है, और हमें लिखा है किसने, श्रीपाल गोयल ने हरियाणा से बहादुरगढ़ से मैसेज, और इसके साथ साथ गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी ने हमें लिखा है नवाशहर पंजाब से। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती अरहान, अहमद सुफिया नवाब पल्ली मारान से हमें लिख रहे हैं, और मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने सनावद मध्य प्रदेश से लिखा है। सुदाम नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप ने हमें मैसेज भेजा। सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजानिया ने हमें लिखा है सिरसा हरियाणा से। गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम का मैसेज, और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, अबान और पूरे परिवार ने हमें मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से लिखा है। धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज, और हमें लिखा है उत्तम नगर होली चौक से जयराम खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने, और बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी आराध्या ने, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामणि शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाने का ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से मैसेज, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से मैसेज, और चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज हमें लिखा है। भूषण खेरा ने फजिल का पंजाब से, विशाल खेरा और विष्णु के साथ साथ में लाडे खेरा और शालानी खेरा और भी तिवांशी खेरा का वानी खेरा के साथ मैसेज हमें मिला है। थोड़ा सा क्लियर अगर आप नामों को लिखेंगे और फॉन्ट थोड़ा बड़ा लिख करके लिखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा पढ़ना। सुरेश नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर का मैसेज हमें मिला है सहारनपुर से आशा नारंग के साथ। अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से हमें मैसेज लिखा है, और हमारे पास ये मैसेज मृदुल राज शर्मा का सीताराम बाजार से, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का मैसेज अलीगढ़ से हमें मिला है, और मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका का मैसेज श्रीगंगानगर राजस्थान से, कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती अंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें मध्य प्रदेश से मिला है, और हमें लिखा है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ने शेरवानी स्कूल गंजरनवाड़ा से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी वर्मा का मैसेज हमें मिला है जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से, और ये मैसेज है काशीपुर उत्तराखंड से विपिन नेहरा का। भगवती पुल प्रहलादपुर से हमें लिख रही हैं, राजश्री नासिक महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस लगातार पहुंच रहे हैं। हेमा का गुरुग्राम से मैसेज, लेकिन फिलहाल तो एक गीत सुना देती हूं, चलिए शुरू कर लेते हैं इस सफर को। और ये गीत किसकी पसंद है, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना की पसंद, तो ये रहा आपकी पसंद का गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज

0: 1,00,000 रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

हाँ जी, कैसे हैं? इस ब्रेक के बाद मैं वापस आ गई हूँ। 10:45:46 हो चुके हैं। आप आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ मैसेजेस लगातार मुझे मिल रहे हैं और बहुत मजा भी आ रहा है, लेकिन क्या करूं कि वक्त बहुत कम होता है ना इस सफर में, तो जितने मैसेजेस को शामिल कर पाती हूँ करती जरूर हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ बिना वक्त गवाए। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का मैसेज हमें मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, और हमें लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से, एसके खन्ना ने विकासपुरी से, इंदिरा नगर भवपुर से, राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन का मैसेज, और हमें लिखा है कि

गीत सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। गौरी शंकर ने नांगलोई से हमें लिखा है, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से मिला है, और राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार ग्राम फ्रांसी हिसार, जिला हिसार से लिख रहे हैं। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया का मैसेज हमें मिला है गांव चाहौदा बागपत से। भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव हमें देवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से लिख रहे हैं, और तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मेघा का मैसेज हमें गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मिला है। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशोरिधान खुराना का मैसेज, और इसके अलावा खतौली शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रद्युम्न वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, दिनेश चौहान ने रामदेवरा से, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने, शिवकन्ना विकासपुरी से हमें लिख रहे हैं, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज। सतप्रकाश सनोथिया ने हमें रोहिणी से लिखा, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फायरा, फारिया और ताहिरा का मैसेज, और हमारे पास ये मैसेज है कैलाश चंद का महिंद्रा पार्क से। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल का मैसेज, और कुछ बात तो है गोल्ड में। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं गोल्ड में, और कुछ बात तो है, ये बात अपने आप में कुछ खास है। गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से हमें मैसेज किया है, एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा ने पटियाला रोड गंजरुनवाला उत्तर प्रदेश से मैसेज लिखा है, और जय हिंद कैप्टन ईश्वर चंद्र शर्मा हमें द्वारका नई दिल्ली से लिख रहे हैं। और इसके अलावा आप देश सेवा में लगे हैं, और हम भी तो एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं, बस हमारा अंदाज थोड़ा अलग है, आपका अंदाज अलग है, और अपने अपने अंदाज में हम इसी तरह से जुड़े रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है जल्दी से ये भी बता दूं। ये गीत सुनना चाहा है अनीता वर्मा ने पीतमपुरा से, और ये गीत सच कहूं तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मौका मिल रहा है तो बजा देती हूं। अनीता जी, ये रहा आपकी पसंद का गीत लता जी और महेंद्र कपूर साहब की आवाज।

जी हाँ, हमें भी एतबार है कि आपको एफएम गोल्ड से बहुत प्यार है, तो चलिए आपके नामों को शामिल कर लेते हैं। दातार सिंह शेखावत राजस्थान से, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत के साथ हमें मैसेज कर रहे हैं। शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान का गंज डुंडवाना से मैसेज, और हमें लिखा है भवानीगढ़ पंजाब से राजेंद्र कुमार सचदेवा ने ये मैसेज, जगदीश कुमार राहुल रितिका का नांगलोई से, और ये मैसेज वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का, और विशाल गवली सोनाली समर्पण भक्ति का मैसेज नाशिक डिंडोरी से, सागर कटक ऋषिकेश से हमें लिख रहे हैं, ऊषा वसानी संतोष वसानी तिरुपति नगर नांदूरा से, और ये मैसेज हमें लिखा है प्रदीप सलूजा संगीता सलूजा ने जनकपुरी से, भगवती ने पुल प्रहलादपुर से, राजकुमारी अनुज अंजलि डॉक्टर पारुल अद्वैक समयपुर बादली से अतर सिंह के साथ हमें लिख रहे हैं, और हमें लिखा है किसने महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज, और टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर सिंह अमन डॉक्टर अमनदीप का हमें मैसेज चंडीगढ़ मोहाली से मिला, कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बेटा बजाज का मैसेज, और कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल ठाकुर का। और ये जो आप करते हैं ना काफी सारे लोग कि बार बार कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से अलग अलग मेल्स करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, सिर्फ एक ही मेल करिए और सही नाम के साथ करिए, वही काफी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं और आप हैं कि बस शैतानी पर रहते हैं हमेशा, ऐसा मत करिए, क्योंकि आप ही के मेल्स बार बार हमें अलग अलग नामों से मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों के, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है हमें। सोनाश राजकोट से जूली जगदीश गुजराती का हमें मैसेज मिला, कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी के साथ, और हमें लिखा है सतीश अनेजा बिमला अनेजा ने चंडीगढ़ से, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र जी ने पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचाया है, हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि नोखेलाल वर्मा का दंतगेरी दतरेंगी भाटापारा से मैसेज, और हमारे पास मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहद मिफ्रा नवाज बेबी चाहत और सादिया का मैसेज, गिरी डीह झारखंड से, और नसरीन अंसारी नौरीन आसना मोहम्मद कैफ राशिद हुसैन का जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज है, पंजाब से गांव नथाना से हमें लिखा है हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता ने, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास। अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू मधु का टिल्लू नायक और मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मैसेज है, और सुखराम सिंह मरावी का सूरजपुर छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से मैसेज, ये मैसेज हमें लिखा है गांव फ्रांसी हिसार से, फिर से देखिए रिपीट मैसेज, ये बात हमें थोड़ी सी बुरी लगती है। जगदीश जोहरी प्रवीण सोनी पूजा पायल का गुजरात गांधीग्राम से मैसेज है, पश्चिम विहार दिल्ली से हमें लिखा है नीरज अग्रवाल सचिन और डी के अलवी ने, और जॉन डिकेस्ट्रो रोजी डिकेस्ट्रो पर्ल और विलिस का मैसेज जनकपुरी सहारनपुर से, राजपाल सोनू सुरेश काजल मानवी लक्ष्य मोहिनी बलवीर और मुकेश कश्यप शीतल कश्यप का मैसेज दूलापुर उत्तर प्रदेश से, और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो बार बार हमें मिल रहे हैं। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा का मैसेज है, अब देखिए मैं बार बार स्क्रॉल करती रहती हूं और

पता चलता है कि सेम मैसेज हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें पढ़ने में। मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश अमन और राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैसेज है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर अंसारी, मेरा जहां आजाद लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा और पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का का मैसेज हमें मिला है। भाई पापा जी तो वो आपके हैं, तो इसलिए पापा जी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ नाम लिख दें काफी है। ऐसे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, समझ नहीं आता कि नाम क्या है। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है ये भी देख लेते हैं। हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार ने, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने और डांगरी से बाबूराम जयपाल ने, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने। तो ये रहा आप सभी की पसंद का गीत फिल्म हमजोली से।

तो जल्दी से इसी गीत के साथ आपसे इस सफर से लेती हूँ इजाजत, लेकिन वापस मिलूंगी लेकर तस्वीर 11:10 पर। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल आपकी दोस्त आंशी रेखा क्रिस्टल वॉइस दिल का मेल बॉक्स से लेती है इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से अल्पकालिक उधार दर या रेपो दर को 5.25% पर तटस्थ बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%.
0: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। बैंक ने अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों द्वारा इक्विटी उपकरणों में निवेश की सीमा भी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

0: श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम श्री मोदी का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरूआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये अत्याधुनिक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार प्रणालियों और स्वचालित मौसम स्टेशनों के विस्तारित नेटवर्क के साथ मौसम संबंधी प्रेक्षणों को एकीकृत करेगा, जिससे वास्तविक समय में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व चेतावनी क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम जैसी पहल ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं और 11:11 हो चुके हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस और ये सफर है तस्वीर का। वही कहते हैं घूमना फिरना सचमुच इतना आसान नहीं होता, ये वही

कर सकते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा ऐसी चीजों में रहता है, जो कुछ नया जानना चाहते हैं, जो नए लोगों से जुड़ना चाहते हैं और जिन्हें अच्छा लगता है कि बस घर में रहें, किसी से बात ना करें। वो लोग घूमने फिरने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और अगर आप अपने आप को एक बार बाहर निकाल कर कहीं चले ही जाते हैं, घूम ही आते हैं, तो सच मानिएगा, यकीन मानिएगा कि आपका जो मूड है वो कई गुना बेहतर हो जाएगा और सचमुच ज्ञान तो आपका बढ़ेगा ही। आप नए लोगों से मिलेंगे, नई चीजें सीखेंगे और फिर आपका मन तो बिल्कुल नहीं करेगा कि आप घर के अंदर बैठे रहें। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपना बैग उठाकर निकल चलेंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे हर बार मैं अपना थैला उठाकर निकल जाती हूँ कि भाई चलिए कहीं घूम आते हैं। और आज भी मैं चली हूँ फूलों की घाटी देखने, तो आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आ जाइए जल्दी से। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित है फूलों की घाटी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर है, पृथ्वी के सबसे जादुई अजूबों में से एक है और ये समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी है और इस घाटी की खोज फ्रैंक एस स्मिथ ने 1931 में की थी। ये लगभग पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है और इसलिए यहाँ पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फूलों की घाटी वनस्पति विज्ञानियों, फूल प्रेमियों और निश्चित रूप से ट्रैकर्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जिनके लिए किसी जगह पर पहुंचना सिर्फ एक बहाना होता है और वहां पहुंचकर शुरू हो जाती है उनकी ट्रैकिंग। तो अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक हैं तो आपके लिए जगह बहुत ही खास है। फूलों की घाटी में लगभग 650 तरह की विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां होती है वो पाई जाती है और यहाँ कुछ बेहद दुर्लभ पौधे भी मिलते हैं, जैसे कि ब्लू पॉपी, लेडीज स्लीपर आर्किड और ब्रह्म कमल जैसे फूल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये घाटी भोजपत्रों के घने जंगलों से घिरी हुई है और पुष्पावती नदी के एक किनारे पर स्थित है। तो अगर आप भी इस घाटी का आनंद लेना चाहते हैं, इस फूलों की घाटी में घूमना चाहते हैं, तो ये मौसम बहुत ही खूबसूरत है यहाँ जाने के लिए। एक और वजह भी है यहाँ क्यों जाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर जाने का जो मौका है वो इस वक्त खुला है, आप आसानी से यहाँ पर पहुंच जाइए और इस जगह को देखिए। इस जगह के बारे में क्या खास है, क्यों यहाँ जाएं, आपके सवाल जरूर हम सभी सॉल्व करेंगे और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि ये जगह क्यों इतनी खूबसूरत है, इतनी खास है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ इस सफर में रहना होगा 11:13 और ये हुए पूरे 14 मिनट। तो भाई चलिए तस्वीर का सफर शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और फूलों की घाटी की सैर हम यूं ही करते चलेंगे। तो लीजिए ये रहा खूबसूरत गीत अनमोल सजना फिल्म से।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और बिना शो क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

सचमुच कोई गलत बात नहीं है और जिसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। अगर आप इस साल फूलों की घाटी को करीब से देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। और बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसके बारे में जानने को, जिसे फ्लावर ऑफ वैली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। और ये नेशनल पार्क 1887 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस घाटी को सबसे पहले एक ब्रिटिश ट्रैकर फ्रैंक एस स्मिथ ने 1931 में खोजा था। दरअसल वो अपने दो साथियों के साथ ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटककर यहां पहुंच गए थे और रंग बिरंगे फूलों से ढकी इस घाटी की खूबसूरती को देखकर वो हैरान रह गए और इसलिए इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी रखा गया। इस घाटी की खासियत, जैसा कि मैंने कहा, 600 से ज्यादा प्रजातियों के फूल हैं जिनमें ऑर्किड्स, पॉपी, प्रिमुलस, मेरीगोल्ड और एनिमोज जैसे बहुत सारे फूल शामिल हैं। सर्दियों में ये घाटी बर्फ से ढकी रहती है लेकिन मई से सितंबर के बीच ये पूरी घाटी रंग बिरंगे फूलों से ढक जाती है। और इसके अलावा यहां कई दुर्लभ जानवर जैसे कस्तूरी मृग, ग्रे लंगूर, लाइन बटरफ्लाई, हिमालयी वीजल्स और हिमालयी भालू और स्नो लैपर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो भाई आपको हो सकता है कि इनके भी दर्शन हो जाए। लेकिन यहां जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है और वो कैसे करना है जान लीजिए। पवित्र हेमकुंड साहिब के पास होने की वजह से सभी यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पोर्टल या मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है यहां जाने के लिए। घाटी में एंट्री के लिए उत्तराखंड वन विभाग से ई परमिट लेना होता है और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप घांगरिया में बने फॉरेस्ट चेक पोस्ट से ट्रैक की एक शाम पहले ही ऑफलाइन परमिट ले लें ताकि खराब मौसम या किसी देरी की वजह से डेट्स लॉक ना हो। और इसे उत्तराखंड टूरिज्म की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। ये परमिट 3 दिनों तक वैलिड होता है और भारतीय नागरिकों के लिए 150 के करीब और विदेशी नागरिकों के लिए 600 रुपए के करीब इसकी फीस रहती है। आप खुद गोविंद घाट और घांगरिया में होम स्टेज या गाइड बुकिंग करके खुद भी यहां पर जा सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग भरोसेमंद ट्रैकिंग एजेंसीज के जरिए ही गाइडेड पैकेज चुनते हैं और अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब 10 से 12 हजार रुपए के बीच हर व्यक्ति पर आप यहां पर पहुंच सकते हैं। इसमें बेस कैंप में रहना, खाना, गाइड और परमिट सभी कुछ शामिल रहता है। घाटी जो है वो 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए इस बार खुली रहेगी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो इस बीच आप यहां जाने के लिए सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं और अगर आपका प्लान बने तो मुझे भी बता दीजिएगा, हम भी आ जाएंगे फूलों की इस घाटी में घूमने पर। ये है रफी साहब की आवाज में एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं, ये लीजिए। फिलहाल इसे एंजॉय करिए और उसके बाद इस घाटी में और भी लंबी सैर तक निकलेंगे हम।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

11:33 हो चुके हैं और हम सैर कर रहे हैं फूलों की घाटी की। अगर आप फूलों की घाटी देखना चाहते हैं तो अभी से आप ट्रैक की योजना बना सकते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, यहां ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय है। मई में जब बर्फ पिघलती है तो फूलों की घाटी घूमने के लिए खुल जाती है। मई के महीने में आपको बर्फ तो खूब दिखेगी लेकिन फूल बहुत कम खिले हुए नजर आते हैं। मई में घूमने का एक बड़ा फायदा यह है कि बारिश कम या बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बारिश का मौसम जून के आखिरी हफ्ते

में शुरू हो जाता है। जून जुलाई की बात करूं तो इन महीनों में फूलों की घाटी में झरने और खूबसूरत ग्लेशियर्स देखने के लिए आप यहां पर जा सकते हैं। और इस महीने में घूमने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बारिश बहुत कम होती है। अगर आप अगस्त और सितंबर में जाएं तो मई में बर्फ पिघलने लगती है और नए पौधे अंकुरित होकर अगस्त तक बढ़ते रहते हैं। मध्य अगस्त की बात करूं यानी अगस्त के बीचों बीच मिड अगस्त की, तो यहां बहुत सारे फूल खिले हुए देख सकते हैं आप। और सबसे ज्यादा फूल देखने का सबसे अच्छा समय है अगस्त और सितंबर। ये कहा जा सकता है कि फूलों की घाटी घूमने या यहां पर मजे या आनंद लेने के लिए फूलों का ये सबसे अच्छा और आखिरी महीना है। लेकिन पौधों और फूल सूखने लगते हैं इसके बाद और अगले मौसम के लिए अपने बीज धरती पर गिरा देते हैं। और अगर बात करूं तो यहां पर्यटकों को फूलों की घाटी में ठहरने का कोई ऐसा प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पर पार्क के अंदर कोई आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस अद्भुत घाटी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किसी निजी लॉज या होटल में ठहरना होगा यहां से आने के बाद। और मैं यहां पहुंचने की बात करूं तो सड़क मार्ग से आप चोपटा या बाकी मार्गों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। चोपटा उखीमठ रास्ते रोड का जो रास्ता है उसके उसमें ही पड़ता है ये रास्ते में। और उत्तराखंड के सभी प्रमुख रास्तों से बस और टैक्सी आसानी से बुक की जा सकती है। फूलों की घाटी गोविंद घाट से अच्छी तरह से जुड़ी है और यहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ती है। गोविंद घाट उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों से परिवहन से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और ऋषिकेश या हरिद्वार से कार, बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। रेल से अगर आप जाएं बाय ट्रेन तो फूलों की घाटी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहां से आपको गोविंद घाट तक जाने के लिए कार या बस का इंतजाम करना होगा। और फूलों की घाटी गोविंद घाट से ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश शहर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों से रेल और सड़क से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाय एयर यहां पहुंचने की तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है जो यहां सबसे नजदीकी है, लेकिन सड़क मार्ग सिर्फ गोविंद घाट तक ही जुड़ा हुआ है। वहां से फूलों की घाटी तक पहुंचने के लिए आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। गोविंद घाट जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से लेकर 292 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और मोटर जो योग्य जो सड़कें हैं वो यहां पर हैं जो अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये हवाई अड्डा यहां से जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दिल्ली से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो आप दिल्ली से अगर जा रहे हैं तो जॉली ग्रांट के लिए आप प्लेन ले सकते हैं, फ्लाइट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात यहां पहुंचने की। बहुत सारी चीजें और भी हैं जानने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद बताऊंगी।

0: फीस तो देखो।
1: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन।
1: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: के साह्रो मख परेर के सुनेको हो मोबाइलमा?
1: रेडियो गान्तोक सुनेको नि। अहिले त यो मोबाइल एपमा पनि रेडियो गान्तोक मजाले सुन्न सकिन्छ नि। सुन्नुहोस् त।

0: श्रोता अन्तिम गीतले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो गोपाल सरगमको आवाजमा। मिडियम वेभ 213.67 मिटर अर्थात 1404 किलो हजमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। उसको साथै श्रोताले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 101.3 मेगा हजमा पनि सुनिरहनु भएको छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौ हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम।
1: नमस्ते बच्चो।
2: नमस्ते दीदी।
1: आज सबसे पहले मैं आपका नाम पूछूंगी। आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम सिद्धमणि शर्मा है दीदी।
1: और आपका नाम?
4: मेरा नाम सरोज बसनेत है दीदी।
1: तो बच्चो, सिद्धमणि और सरोज, आप लोगों ने कभी अलंकार कहते हुए सुना है?
2: नहीं दीदी, मैंने नहीं सुना है।
1: अलंकार को वैसे आभूषण या गहना भी कहते हैं। यह अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। जिस प्रकार स्त्री आभूषण के धारण करती है तो उससे स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, आज हम इसी अलंकार के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है?
2: ठीक है दीदी।
1: साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द प्रयोग से तथा कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। इसी आधार पर अलंकार के दो मुख्य भेद माने जाते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। तो क्या क्या है आप दोनों बताओ?
2: शब्द अलंकार और अर्थालंकार।
1: शब्द अलंकार और अर्थालंकार, बताइए।
2: शब्द अलंकार और अर्थालंकार।
1: किस आधार पर अलंकार के दो भेद माने जाते हैं? सिद्धमणि आप बताओ।
3: कहीं शब्द प्रयोग से तथा कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। इसी शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद माने जाते हैं।
1: अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं। काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है अथवा चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। अगर हमने शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रख देंगे तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बदु छाए। यहाँ तरणी के पर्यायवाची सूर्य और तनुजा की जगह पुत्री रख देने पर सूर्य पुत्री तट तमाल, इस तरह कहना पड़ेगा तो सारा चमत्कार जाता रहेगा। आप सरोज आप बोलो, शब्द अलंकार किसे कहते हैं?
4: काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है।
1: अब अर्थ अलंकार किसे मानेंगे? काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो रहा हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, इस वाक्य में शशि मुख शब्द का अर्थ ने काव्य में चमत्कार लाया है। तो बच्चों, काव्य में अर्थालंकार कब माना जाता है बताओ?
2: काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो रहा है तो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है।
1: ठीक, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए है ना?
2: जी दीदी।
1: अब हम शब्द अलंकार के भेद जानेंगे। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या अधिक बार होता है अथवा एक ही व्यंजन वर्ण बार बार प्रयोग में आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कालिंदी कुल कदम्ब की डारिन, इसमें क वर्ण की आवृत्ति है। कालिंदी में क है, कुल में क है, कदम में क है, की में क है। तो इसी तरह आपको मैं दूसरा उदाहरण दूंगी, तट तमल तरुवर बहु छाए, यहाँ तो वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है, विमल वाणी ने वीणा ली, इसमें किस वर्ण की आवृत्ति है? सिद्धमणि आप बता सकते हो, इसमें विमल वाणी ने वीणा ली में,
3: इसमें व वर्ण की आवृत्ति है।
1: शाबाश। अब दूसरा उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए। सरोज आप बताओ।
4: इसमें माँ वर्णा की आवृत्ति है दीदी।
1: शाबाश, तो आप लोगों को समझ में आया है कि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप दोनों बताओ अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है?
2: जिस रचना में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की
4: एक या अधिक बार होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है।
1: ठीक है, अब हम यमक अलंकार कहाँ होता है वह देखेंगे। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए

0: और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इस वाक्य में घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार काली के साथ घटा आया है, काली घटा, अर्थात इसका अर्थ होता है वर्षा काल की मेघमाला या बादल का माला। दूसरी बार घमंड के साथ घटा आया है, घमंड घटा, अर्थात घमंड कम हुआ। इस तरह दो बार घटा शब्द प्रयोग हुआ है भिन्न भिन्न अर्थ के साथ। दोनों घटा शब्द का अर्थ अलग अलग था। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है और यमक अलंकार में एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है भिन्न भिन्न अर्थ के साथ। अब हम अन्य उदाहरण देंगे, आप लोग उसका अर्थ बताना। जैसे तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी, पहला तीन बेर का अर्थ क्या है?
1: पहला तीन बेर का अर्थ तीन बार खाना है।
0: और दूसरा तीन बेर का अर्थ क्या है जो वह खाती थी?
1: दूसरा तीन बेर का अर्थ फल का नाम है जो वह खाती थी।
0: तो ये है यमक अलंकार, जहाँ एक ही शब्द बार बार आता है भिन्न भिन्न अर्थ के साथ। तो बच्चों, अब हम श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे, जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम गति दीप की सोए, बारे उजियारे करई बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारे और बड़े दोनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। बारे का अर्थ होता है बचपन, एक अर्थ है बचपन और दूसरा जलाने पर। उसी तरह बढ़े का अर्थ होता है एक बड़ा होने पर और दूसरा बुझने पर। ठीक है?
2: ठीक है दीदी।
0: एक और उदाहरण देना चाहूंगी, मेरी मव बधा हरौ राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। यहाँ हरित शब्द के तीन अर्थ है, हर लेना एक अर्थ हुआ, दूसरा हर्षित होना और तीसरा हरे रंग का होना। तो बच्चों, इस तरह हमने शब्द अलंकार के तीन प्रकार जाना है, वो क्या क्या है आप लोग बताओ।
1: शब्द अलंकार के तीन प्रकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार।
0: श्लेष अलंकार बोलो।
1: श्लेष अलंकार।
0: शाबाश बच्चों, अब हम प्रमुख अर्थालंकार क्या क्या है वह जानेंगे। अर्थालंकार सात प्रकार के है, एक उपमा अलंकार, दो रूपक अलंकार, तीन उत्प्रेक्षा अलंकार, चार अतिशयोक्ति अलंकार, पांच अन्योक्ति अलंकार, छह मानवीकरण अलंकार और सात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ दोहराओगे, ठीक है?
2: ठीक है दीदी।
0: एक उपमा अलंकार,
1: एक उपमा अलंकार,
0: दो रूपक अलंकार,
1: दो रूपक अलंकार,
0: तीन उत्प्रेक्षा अलंकार,
1: तीन उत्प्रेक्षा अलंकार,
0: चार अतिशयोक्ति अलंकार,
1: चार अतिशयोक्ति अलंकार,
0: पांच अन्योक्ति अलंकार,
1: पांच अन्योक्ति अलंकार,
0: छह मानवीकरण अलंकार,
1: छह मानवीकरण अलंकार
0: और सात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार,
1: और सात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
0: अब हम उपमा अलंकार के विषय में जानेंगे, जहाँ एक वस्तु व प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, तब वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख, कैसा मुख?
1: सुंदर मुख।
0: किसकी तरह?
1: चांद की तरह।
0: इस वाक्य में मुख का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए मुख उपमेय है। मुख का वर्णन या तुलना चांद के साथ किया गया है, इसलिए चांद उपमान है। कैसा मुख के जवाब में सुंदर मुख आता है, इसलिए सुंदर साधारण धर्म है और मुख और चांद को सा ने संबंध दिखाया, इसलिए सा वाचक शब्द है। इस तरह उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार तत्व अर्थात अंग है। तो बच्चों बताओ, उपमा अलंकार के कितने अंग हैं और वह क्या क्या है?
1: उपमा अलंकार के चार

0: संघ है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।
1: अब मैं एक और उदाहरण दूंगी और आप दोनों उसका भेद बताना। जैसे फूल सी कोमल बच्ची, इस वाक्य में बच्ची क्या है?
0: बच्ची उपमेय है।
1: फूल क्या है?
0: फूल उपमान है।
1: साधारण धर्म क्या है?
0: साधारण धर्म कोमल है।
1: सी क्या है?
0: सी वाचक शब्द है।
1: तो बच्चों, आप लोगों को उपमा अलंकार समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हुए और रूपक अलंकार के विषय में जानेंगे। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैया, मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है चरण कमल बढ़ो हरिराई। यहाँ चरण क्या है?
0: चरण
1: बताओ।
2: चरण उपमेय है
1: और कमल?
2: कमल उपमान है।
1: ठीक कहा। यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है पढ़ेंगे, ठीक है?
0: ठीक है दीदी।
1: जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होता है। इसके वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जो, जानो आदि। उदाहरण इस प्रकार है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अर्थात यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओष युक्त जल कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। तो बच्चों, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द का क्या स्थिति है?
0: रूपक अलंकार में वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है।
1: तो अब हम अतिशयोक्ति क्या है यह जानेंगे, ठीक है?
0: ठीक है दीदी।
1: बोलो अतिशयोक्ति अलंकार।
0: अतिशयोक्ति अलंकार।
1: तो अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय अर्थात किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़कर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। जो वास्तविकता में है उससे बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार है। समझ गए?
0: समझ गए हैं दीदी।
1: तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत को वर्णन किया जाए, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है। उदाहरण है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ अली के माध्यम से एक ऐसे गुणी व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा, अर्थहीन, धनहीन गुलाब जैसा रह गया है। तो यह कौन सा अलंकार था?
0: यह अनुयोक्ति अलंकार था।
1: यह अलंकार कहाँ होता है, सरोज आप बताओ?
2: जहाँ उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है।
1: शाबाश। अब हम मानवीकरण अलंकार क्या है उसे पढ़ेंगे। जड़ अथवा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप दोनों मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है?
2: ठीक है दीदी।
1: जड़ अथवा
0: अचेतन तत्वों पर

0: मानवीय भावो
1: मानवीय भावो
0: संबंधो
1: संबंधो
0: और क्रियाकलापो
1: और क्रियाकलापो का आरोप करके
0: उन्हें मनुष्य की तरह
1: उन्हें मनुष्य की तरह
0: व्यवहार करते हुए दिखाना
1: व्यवहार करते हुए दिखाना
0: मानवीकरण अलंकार होता है
1: मानवीकरण अलंकार होता है।
0: तो इसका उदाहरण है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इस कविता में संध्या को सुंदरी परी के जो धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतर रही है के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यह मानवीकरण अलंकार है। समझ रहे हो बच्चों?
1: जी दीदी समझ रहे हैं।
0: अब हम अंतिम अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है पढ़ेंगे। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमश आवृत्ति तो हो पर अर्थ भिन्नता न हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग माना जाता है। जैसे सूरज है जग का बुझा बुझा, यहाँ बुझा बुझा शब्द का दो बार आवृत्ति हुआ है परंतु अर्थ में भिन्नता नहीं है। उसी तरह खड़ खड़ करताल बजा, करताल कैसे बजा बताओ?
1: करताल खड़ खड़ बजा,
0: ठीक कहा। खड़ खड़ से ध्वनि का संबंध है। इस प्रकार बच्चों मुख्य अर्थालंकार क्या का है बताओ?
1: मुख्य अर्थालंकार है उपमान अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिथय अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
0: शाबाश बच्चों। तो इसी के साथ अब हम आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हमें आशा है हमारे श्रोता वृंद को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: दीदी।
3: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दी भाषा पाठको कार्यक्रम अलंकार विषयमाथि पाठ संचालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो रेणुका चक्रवर्तीले। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। उसको साथै श्रोताले एफएम कञ्चनजंघा 101.3 मेगाहर्ज र मोबाइल एप न्यूजन एआईआरमा पनि सुनिरहनु भएको छ। समय अहिले अपराह्नको 1 बजेको छ। अब प्रस्तुत गर्दैछौ एनसीईआरटीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी द्वारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूं, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना कि मरुस्थल केवल गर्मी

0: नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहां रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहां वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहां वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी जी जी लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है।
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं। यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओ जहां तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा,

0: अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
1: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की
3: जय। अच्छे से शासन करेंगे।
4: खास ऐलान।
0: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
5: हाँ हाँ महाराज,
0: महाराज
5: बताइए,
0: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
5: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
0: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
6: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
0: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
7: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
1: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
0: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
1: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
8: जी महाराज, बहुत कृपालु।
9: महाराज की जय हो,
10: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
1: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
0: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
5: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
5: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
5: धन्यवाद महाराज।
1: अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
11: हुआ? मुझे भी कैसे हो सकता है?
5: क्या क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
11: कैसे हो सकता
5: है? आया था
11: राजा, नकली हीरा तो सकता है,
5: नकली कैसे हो गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया,
11: सभी
5: ने बोला कि नकली है।
11: महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय।
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
5: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
5: जी, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से कराई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
5: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है। बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए। पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
2: महाराज की
4: जय!
2: महाराज की
4: जय!
2: महाराज की
4: जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
12: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
13: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है।

0: लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सुन्दै हुनुहुन्थ्यो एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी। आज की इबारत से समझ में आ रहा है भाई, अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनू उड़ती फिरू ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फेहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें,

लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नजारे हैं। बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नजारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, जरा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं, गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी, वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो?

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सबके सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहां पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियां हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकालकर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी जरा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़े और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार संगीतकार का नाम जरा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदे बरसने लगी ये गाना, और नील गगन की छाओं में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए ये वाला गाना भी लिखा है, जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफर में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है। तो आप बताइए क्या था, हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत जरूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गाना था और हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, साधना और जॉय मुखर्जी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना, सुरीला सफर। ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: World champion Gukesh Dhamaraju. In round 9, the victory took Pragyananda to 15 points, just half a point behind leader Wesley, who has 15.5 points after beating Magnus Carlsen. India Meteorological Department has said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Central Arabian Sea, entire Goa, parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, remaining parts of Tamil Nadu and parts of northeastern states during the next 2 to 3 days. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,804 rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under-18 Asia Cup hockey in Japan this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपये की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।

0: की नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से CAPF कर्मियों द्वारा लगभग 6.40 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6.40 करोड़ वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों

0: एनवायरमेंटल डे सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे यस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
2: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि यह पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
3: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
4: लोकल फॉर भोपाली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल

0: फाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। समय बेला स्टुडियोको घड़ीमा अपराह्नको 2:30 भएको छ र श्रोता अब हामी उपस्थित भएका छौं आज लिएर केही नेपाली लोकगीत र कार्यक्रमको थालनी गर्दै प्रथम गीत हामी सुनाउँदैछौ श्री कुमार पाखरिनको आवाजमा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम दमन जाएंगे। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रूपये की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BAS को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 12वीं

नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राम राम, हेलो, हाय, आय हाय। मन भावन आ गया आपके पसंद का कार्यक्रम, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। और आज वो दिन है जो बहुत खास है। जी हाँ, आम दिन थोड़ी ना है। हालांकि गर्मियों में तो आम की बातें होती ही रहती, पर ये खास दिन है क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और मित्रों, भारतीय वांग्मय में हमेशा से पर्यावरण को, नेचर को, मौसम को, धरती को बहुत महत्व दिया गया है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये बोलें, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जी हाँ, यानी कि आपकी जो उंगलियों के जो पोर हैं शुरुआत में, वहां लक्ष्मी जी विराजमान हैं, हाथ के मध्य में सरस्वती जी और हाथ के मूल में गोविंद यानी भगवान विष्णु। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडलम, विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी हे लक्ष्मी माँ, आप ही धरती हो, नदियां और पर्वत भी आप ही हो। अब मैं उठकर पैर को, धरती को स्पर्श कर रहा हूं अपने पैर से, तो हे लक्ष्मी मां, इसलिए मुझे क्षमा करें। आप सोचिए कैसी विचारधारा होगी उस व्यक्ति की जो ये सोचेगा कि धरती अपनी पावन मां है, लक्ष्मी मां है। है ना सुंदर बात। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से आकाशवाणी पे आप बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम सुन चुके हैं इसी विषय पर। बात को आगे बढ़ाते हैं, आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं मन भावन में, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत। आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट।

0: आपके सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
4: जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पे मैं अपनी तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ आकाशवाणी को, क्योंकि आकाशवाणी का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में। स्पेशली ड्यूरिंग माई यूथ डेज मैं युववाणी में अपनी कलम से लिखी हुई कुछ कविताएं पढ़ने जाती थी, और वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जिसने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं अपने दिल की बात पूरी बोल पाती थी। बहुत लोग मुझे सुनते थे और मुझे बहुत सारी तारीफें भी मिलती थी, और तारीफ के साथ मुझे जो छोटा सा अमाउंट मिलता था, मैं 90s की बात कर रही हूँ, वो बहुत कीमती होता था। मुझे जो वहां से सम्मान मिला वो भी बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मन भावन फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ढेर सारे संदेश। अब मेरे कार्यक्रम में रूमी मलिक के कार्यक्रम में अटेंडेंस लगती है, लगानी तो पड़ेगी। वादा किया है, नहीं क्या बोलते थे, मैंने प्यार किया में दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मोहम्मद सैयद अब्बासी जी, खैर मकदम है आपका, स्वागत है बहुत बहुत। हमारे बहुत पुराने हर दिल अजीज लिसनर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, बहुत ही शाइस्ता। सीताराम कागरा जी हमारे साथ हैं, सुरेश नारंग जी, सुनील गायकवाड़ जी, जय हरजिंदर सिंह भाटिया, मास्टर अशोक कुमार, शंकरलाल जायसवाल, भूषण खेरा, मोहम्मद यूनुस खत्री, तुलसी मस्कीन जी। आगे बढ़ते हैं, शंकरलाल जायसवाल जी का नाम ले लिया ना, हाँ अब अगला पेज करो जी। आओ सकीरी, बोधराज खोरवाल जी हमारे साथ हैं, अनिल मोहन जी हैं, इतने रिपीट मिल जाते हैं ना तो बार बार नाम नहीं रिपीट करना चाहते, आप खुद ही बोर हो जाओगे। नहीं नारायण हेगे बोल रहे होंगे, नहीं हमारा नाम तो आता है। विजय सुरलकर, कुमकुम जी, आफ्ताब अंसारी, एचआर पांड्या जी, पुंजा दी नभंकर। आगे चलते हैं, देखते हैं और द नेक्स्ट पेज। भारत भूषण जी हमारे साथ में हैं और धर्मेंद्र छीपा जी भी हमारे साथ हैं, यूनुस खत्री जी तो हैं ही, ताज मोहम्मद, और कोई रह गया, रह तो नहीं गया, नाम सारे ले लेते हैं ना क्योंकि आकाशवाणी एट 90, जी हाँ 90 वर्ष की हो गई आकाशवाणी, तो हम 3:30 बजे आपको सुनाएंगे बहुत कमाल का एक और इंटरव्यू। फनेश चंदन जी हमारे साथ है, बबलेश पवार हैं हमारे साथ में, सतीश अनेजा जी, आई फाइनली फाउंड योर नंबर, द मैसेज, योर ऑफरिंग्स आर सो वंडरफुल दैट दे ब्रिंग अ स्माइल टू आवर फेसेस, कांग्रेचुलेशंस, शुक्रिया। अब हमारे साथ हैं राधे श्याम देवांगन और चंपा देवांगन, ये इंदिरा नगर भवरपुर से लिखते हैं कि हमें वो गीत सुना दीजिए, कौन सा वाला, डपली वाले, सुने गीत, आओ जी आओ।

महफिली वाली फरमाइश पूरी करने वाली आरजे गाना बजा। प्यारी प्यारी रूमी मलिक बुआ जी को हम बच्चों का आदाब। आहा तस्लीम अल्तमर समीना मुदस्सिर फिरदौस जुम्मा नगर खंडवा से लिखते हैं, नमस्ते दिग्दर्शन कौर जी, आपका मैसेज आया था, कहीं पे खो गया पर मुझे याद है आपने लिखा था। कर लो अधिक मास है पुरुषोत्तम, सिर्फ 15 जून तक और है, 10 दिन रह गए, चाह लो पढ़ लो पाठ कर लो, जो दान पुण्य करना है अच्छे बन जाओ भाई, भगवान को बोलो। मैं तो भगवान को ये कहती हूँ, भगवान मुझे ना मेरा बेटर वर्जन बना दे, है ना, मैं सब कुछ सह पाऊं कुछ ना कह पाऊं। नहीं नहीं ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे अच्छे आपके संदेश आए हैं और अभी बस कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी जो के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग। श्रीमती उषा भसीन हमारे साथ हैं जो पूर्व

अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन रह चुकी हैं, है ना। तो इसके साथ साथ और भी अगर कोई संदेश आए, अल्तमश खत्री जी का तो हमने संदेश पढ़ दिया आपको, ठीक है, और बाकी सब लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। कुमकुम जी बहुत अच्छे आप मेल भेजती हैं और हर बार आप एक नई फरमाइश करती हैं, एक ही कार्यक्रम में पांच छह बार, है ना, पांच छह अलग अलग गाने। तो बस आपसे यही कहना था कि खुश रहिए।

0: नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में हम आप तक लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे विशेष कार्यक्रम जिसमें अनमोल आवाजें आप सुन रहे हैं। ऐसी आवाजें जो खुद एक याद का हिस्सा है, लेकिन जब बात होती है उन हस्तियों से जिनकी ये आवाज है, तब उनकी यादों का पिटारा खुलता है और उसमें से भी अनमोल रत्न हमें मिलते हैं। आज एक ऐसी ही हस्ती हमारे साथ स्टूडियो में है। मैं स्वागत कर रही हूँ स्टूडियो में उषा भसीन जी का। आप अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन साथ ही आपने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर उच्चाधिकारी के रूप में कार्य किया है और एक व्यापक अनुभव आपका है प्रसारण से जुड़ा हुआ। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी इस विशेष हस्ती का कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग में। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ आज आकाशवाणी आकर और ये माइक देखकर, इसके आगे बैठकर, जिसके साथ मेरा तन मन सब रोमांचित हो जाता है
0: जी। और आपकी खुशी जो है वो आपके चेहरे से दिख रही है और हमें ये खुशी एक आशीर्वाद की तरह प्रतीत हो रही है कि हमने इस तरह के उच्चाधिकारियों की एक लेगेसी है जिसे और आगे लेकर जाना है और जिसे संभाल कर रखा हुआ है। आज जब आपसे बातचीत करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उषा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी में जब आप कार्यरत थी, उससे भी पहले जो सबसे पहली याद रेडियो से जुड़ी हुई है वो कौन सी है आपकी?
1: जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं कोई बहुत स्टूडियस नहीं थी
0: जी,
1: और साइंस की स्टूडेंट थी, तो मैं चोरी चोरी अपने किताब या बड़ा सा रजिस्टर लेके उसके पीछे रेडियो रख के ट्रांजिस्टर, और उस पे तब क्रिकेट भी सुनती थी
0: जी।
1: पर एक कार्यक्रम में सुनती थी तामीले इरशाद, अंजार अहमद थे जो उसको प्रस्तुत करते थे
0: जी।
1: उर्दू भाषा मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मेरे नाना, जिनके यहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, वो हिंदी नहीं जानते थे, स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उनको सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू आता था और वहाँ उर्दू का काफी चलन है
0: जी।
1: और उसके बाद ये हुआ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में शिमला में पढ़ रही थी MSc में, तो सर्दियों में ये ह्यूमन राइट्स डे की बात है, 10 दिसंबर को वो मनाना चाहते थे
0: जी।
1: पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जा चुके थे, हमारा जो बायोसाइंसेस डिपार्टमेंट था उसके लोग थे शायद कुछ, पर जब हम गए थे तो लोगों ने कहा कोई आप एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज नहीं करेंगे, डिबेट्स कुछ नहीं, तो हम कुछ नहीं करते थे। तो अचानक मेरे हॉस्टल में आया कि आपकी वार्डन ने आपका नाम सजेस्ट किया है, जो हमारी प्रोफेसर भी थी बॉटनी की
0: जी,
1: तो कि आप वहां बोलें उस कार्यक्रम में, तो साथ में ही था यूनिवर्सिटी कैंपस, तो मैं चली गई और बोला। और मुझे नहीं पता था कि एक दो दिन के बाद ट्रिब्यून में काफी उस पर चर्चा वगैरह हुई और वो मेन अखबार था, उसके साथ हम पले पढ़े, यानी मैं बात खत्म हो गई। जब दोबारा यूनिवर्सिटी खुली तो एक दिन अचानक कोई आया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पर मैं छोटा करूंगी, तो वो मिलने आया कि आकाशवाणी से, तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं जानती। जब मिले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे उधर आए आकाशवाणी स्टूडियो और एक परिचर्चा होनी है, हमें राम चाहिए या रावण, तो उसमें आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उसमें भाग लें। और वहां बहुत अच्छा लगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे बाद में मेरे सीनियर कलीग हुए, तो बात खत्म हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद बहुत ज्यादा कोई वहां कंट्रोवर्सी हो गई, तो वाइस चांसलर को इंटरव्यू करना है तो कोई मान नहीं रहा है, तो आप करेंगी? मैंने कहा मैं कर दूंगी, तो मैंने वो इंटरव्यू कर दिया। तो इस तरह से मेरी आकाशवाणी से यात्रा शुरू हो गई। और फिर थोड़े दिनों बाद किसी ने कहा कि आपकी आवाज ऐसी है कि आप ना नाटक की परीक्षा जो ऑडिशन है, तो मैंने दे दी, तो मेरे पास हो गई। तो पहला नाटक जो मुझे करने को मिला, बूढ़े की मौत, एक कर्नल विष्णु शर्मा थे, उन्होंने लिखा था। और स्टूडियो में आज भी मेरी आंखों में वो विजन है कि स्टूडियो के दो एंड में हम लोग दो लीड थे हम, और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि दूसरी लीड क्या थी, अनुपम खेर। वो तब नए नए NSD से आए थे और शिमला के निवासी थे, तो उसके बाद बहुत सालों बाद वो मुझे दूरदर्शन मिले तो बड़े हैरान हो गए
0: जी।
1: तो ये तो उसका मुझे 15 रुपया मिला था। उसके बाद पढ़ाई खत्म हो गई, मुझे टीचिंग नहीं करनी थी, तो मुझे कुल्लू मनाली वापस भी नहीं जाना था, मुझे शिमला बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कैसे रहूं। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी से जुड़ गई और बाद में उनकी पोस्टिंग निकली तो मैंने अप्लाई कर दिया और मैं आकाशवाणी में आ गई।
0: जी, बहुत ही रोचक बातचीत हमारी चल रही है और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस मोड़ पर ये बताए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: गाइड फिल्म का गाना है ना?
0: जी,
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जी, बहुत ही अच्छा सा गाना है और हमेशा ही एनर्जी से भर देता है।
1: जी,
0: तो लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: जब आप आकाशवाणी आई तब क्रिएटिविटी से जुड़ना मुश्किल रहा या इट वॉज इन योर वेन्स ऑलरेडी, वो आपके लिए बहुत सहज था?
1: देखिए, ईश्वर की कृपा और मेरा लालन पालन ऐसा हुआ है कि मुझे कभी भी सच पूछे कोई मुश्किल कुछ नहीं लगा
0: जी,
1: क्योंकि बचपन से एक ऐसा आत्मविश्वास दिया गया था। मैं छोटे से गांव की सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ जहाँ छठी जमात में एबीसी पढ़ाई जाती है, पर somehow एक कूट कूट कर भरा गया था कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा परिचय बचपन का, और बाकी तो फिर ये है कि छोटी जगह में ना आप सब कुछ ही कर लेते हैं, स्पोर्ट्स भी करते हैं।

0: डिबेट्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जो एक आत्मविश्वास बचपन में मिला, वो आगे बढ़ने में वो ही एक बड़ा हथियार रहा
1: जी।
0: और आकाशवाणी का आप पूछ रही हैं, तो यहां तो भाषा का ही बात है सारी। उन कलाओं से वो सब, मैं अनभिज्ञ थी, साइंस स्टूडेंट थी, तो भाषा की कोई ज्यादा बात नहीं होती थी। इट वॉज ऑल लर्निंग, कैसे बोलना है, कैसे कुछ रहा होगा बीच में, पर उसको कैसे मांझना है। हम लोग ना छोटे स्टेशनों पे लोग बड़े अनुशासित होते हैं
1: जी,
0: तो बिना ऑडिशन के कोई एयर पे नहीं जाता। तो ड्रामा में तो ऑडिशन मैंने कर लिया था, बाद में वहां अंग्रेजी का भी हुआ तो मैंने वो भी किया, तो काफी मेहनत हुई है ना। आकाशवाणी शिमला ने मुझे इतने मौके दिए, मैं आपको बताऊं, सीमांत बिल्कुल चाइना बॉर्डर के साथ जो ट्राइबल एरियाज है, वहां से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तक
1: जी,
0: और प्रधानमंत्री के साथ सैनिक चौकियों पे खड़े होने से लेकर भारत उत्सव विदेशों में, ये सारे मौके मुझे आकाशवाणी ने दिए
1: जी।
0: तो आकाशवाणी ने मुझे एक नई दुनिया दी, जैसे कि पूरा आकाश मेरे सामने। और हाँ, ये भी हुआ कि जो चुनौतियों के साथ अवसर आए, मैंने उनको छोड़ा नहीं।
1: बहुत विस्तृत अनुभव है उषा जी आपका। मैं इस बीच ये जरूर जानना चाहूंगी कि सिलेक्शन लेटर जब हाथ में आया आकाशवाणी का, तो वो अनुभव मैं चाहूंगी कि आप साझा करें और परिवार में क्या प्रतिक्रिया।
0: आप सिलेक्शन लेटर की बात कर रही हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जब मैंने अप्लाई किया
1: जी,
0: और वो जो एक्नॉलेजमेंट आया यूपीएससी का
1: जी,
0: तो ऐसा लगता था उसको मढ़वा के रख लें
1: जी।
0: तो मैं एक ही पंक्ति बोलूंगी, और बाद में आप सोचें, मैं उस यूपीएससी के सामने रहने लगी, मुझे वहां घर मिला
1: जी।
0: तो प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हम उस पर विश्वास करें
1: जी,
0: उस पर छोड़ दें और फ्लो में रहें, तो जीवन बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं आई, हर तरह की चुनौतियां आई।
1: मैं चाहूंगी कि कुछ विशेष कार्यक्रम आप हमारे साथ जरूर इस वक्त उनके नाम साझा करें, उनके बनने की जो कहानी है और कैसे उस वक्त वो मुश्किल दौर रहा होगा, वो सब जरूर आप साझा करें।
0: जैसे वहां पर मुख्यमंत्री जो थे, वो चाहते थे कि हम रिपब्लिक डे परेड जो है हिमाचल के शिमला की, उसको लाइव करें जैसे दिल्ली से होती थी। तो हमने उनको बता दिया, काफी बात हुई, पर वो माने नहीं, हम भी नहीं माने कि हमारा राष्ट्रीय प्रसारण है, हम इसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो वो इतने अडिक्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना जो फंक्शन है रिपब्लिक डे परेड का, वो तब शुरू करूंगा जब आपका दिल्ली का प्रसारण समाप्त हो जाएगा
1: जी।
0: तो उन्होंने वो आगे कर दिया। जो हुआ जी, रिज मैदान में बर्फ पड़ रही थी, कोई बूथ नहीं था, कुछ नहीं था, और एक हाथ में माइक लेकर बर्फ पड़ रही है और कमेंटेटर कोई नहीं था, तो हमारे डायरेक्टर ने माइक पकड़ा। बाद में जब मेरे हाथ ठंड से कांपने लगे और आंखों से नाक से पानी आ रहा था और वो आंखों देखा, हाल प्रसारित हो रहा था, वो तो एक बात। अब कोई सैटेलाइट नहीं था
1: जी,
0: कोई और लिंक नहीं था कि आप रिज मैदान शिमला से, जिन्होंने देखा होगा उनको पता है, वहां से आप चौड़ा मैदान जहां आकाशवाणी के स्टूडियो है वहां तक कैसे उनको करेंगे। तो हमने ये किया कि वो टेप्स पे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और वहां तक गाड़ी भी नहीं आती थी आकाशवाणी की
1: जी।
0: तो प्रोडक्शन असिस्टेंट, जब 20-25 मिनट हो जाते थे, टेप तोड़ा जाता था और निकाल के वो प्रोडक्शन असिस्टेंट के हाथ में, और वहां मॉल के एंड में घड़ी है, वहां पे हमारी जीप होती थी, तो वो उसमें बैठेगा और दौड़ाकर आकाशवाणी स्टूडियो जाएगा। अब चुनौती ये कि इससे पहले कि वो लाइव चल रहा है
1: जी,
0: वो खत्म हो जाए टेप, दूसरा टेप वहां पहुंचना चाहिए। तो वो सब हुआ और बहुत अच्छे से हुआ। और जब हम स्टूडियो पहुंचे और हमने 2 बजे 3 बजे जितने भी दोपहर में पहला कप चाय का पिया, तो क्या मतलब अनवरत टेलीफोन कॉल्स डायरेक्टर के कमरे में आने लगे। अब फिर उनको आदत पड़ गई, अगले साल फिर उन्होंने किया, तब थोड़ा एक स्टेज बना दिया, पर कोई ऐसा कोई साउंड प्रूफिंग कुछ नहीं था। तो वो तो मैं एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी थी और मैं कमेंटेटर भी थी, बाकायदा सिलेक्ट हुई थी, जसदेव सिंह जी ने सिलेक्ट किया था नॉन स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए, तो वो किया। पर देखिए ये क्या था, वो टीम की प्रतिबद्धता, जो हमारी टीम थी, हर इंसान चाहता था कि वो कार्यक्रम सफल हो।
1: सही बात है। और मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि जिस टेप का बार बार जिक्र हो रहा है, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग्स स्पूल पर होती थी और पूरी टीम, चाहे वो 50 लोगों की है, 30 लोगों की है, उन सबकी मेहनत के फलस्वरूप वो टेप तैयार होता था। और वो टेप अगर सही समय पर स्टूडियो पहुंचकर नहीं चला, अगर प्रसारण नहीं हुआ, तो उन सबकी मेहनत खराब हो जाती थी, इसलिए उसकी

0: बहुत वैल्यू थी उस टेप की और उसे सही समय पर चलाना भी बहुत जरूरी था। और वही उषा जी बता रही हैं कि किस तरह से काम तो सारा हो गया लेकिन टेप की अपनी एक जर्नी है। बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये बताइए कि आप कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवा रही हैं।
1: देखिए, हमारे तो जो गायक हैं और वो नहीं रहे वो सब पूजनीय हैं
0: जी,
1: उनकी आवाजें पूजनीय हैं। एक गाना जो आशा जी का ले लेते हैं वो है जाइए आप कहां जाएंगे
0: जी।
1: वो आज इसलिए कि आकाशवाणी से हम गए हैं
0: जी,
1: उठकर नौकरी थी, वापिस इस माइक पे आए।
0: आप कहां जाएंगे इस गाने के बाद फिर से हम बातचीत जारी रखेंगे। आपको सुनवा रहे हैं प्यारा सा गाना।

0: वैसे तो हम हर विषय पर ही काम करते हैं रेडियो में और हर तरह की ऑडियंस जो है हमारी टारगेट ऑडियंस है, लेकिन आपने सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया तो और उसकी विशेष तैयारी भी होती थी, हर उम्र के लोगों से जुड़ना, उन्हें समझना। मैं चाहूंगी कि ये भी आप जरूर बताएं ताकि श्रोताओं को अंदाजा लगे कि एक छोटा सा कार्यक्रम जब वो सुनते हैं 15 मिनट या आधे घंटे का, उसके पीछे की कितनी मेहनत होती है।
1: देखिए, धारावाहिकों की शुरुआत हुई जीवन सौरभ से और ये काम जो है महानिदेशक ने सौंपा था
0: जी।
1: अब मैं सबसे नीचे की पायदान पर खड़ी प्रोग्राम ऑफिसर और महानिदेशक सर्वोच्च, बीच में बहुत से लोग, तो उनको ये लगा कि युववाणी तो चल रहा है पूरा चैनल, तो ये नया क्या यूथ के लिए करवा रहे हैं। और सामाजिक शास्त्र की तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, प्योर साइंस की स्टूडेंट थी, तो जो कुछ मैं कह सकती हूँ मैंने सीखा वो श्रोताओं से सीखा
0: जी।
1: वो मेरे सबसे बड़े शिक्षक हैं, तो मैं उनके बीच कूद गई।
0: हाँ।
1: और सैकड़ों युवाओं से, किशोरों से, उनके माता पिता से, उनके काउंसलर से मैंने बातें की और दर्जनों टेप भर दिए। तो लंबी कहानी है जीवन सौरभ की। और फिर वो बना, उसमें एक एपिसोड अनवेड मदर्स पे था, कैसे होता है, और उसमें एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि कितना विभत्स है ये सारा
0: जी।
1: और आम है ये। उसके बाद एक एपिसोड उस बच्ची पे था, उस परिवार को कैसे मनाया होगा ताकि उनके जो संजीदगियां हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, वो भी हर्ट ना हो। पर पूरा एपिसोड बने कि उसने सुइसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। उसकी बहुत अखबारों में चर्चा हुई
0: जी।
1: और मंत्री जी ने महानिदेशक को खुद फोन किया कि कोई धारावाहिक तुम्हारे यहाँ चल रहा है, तो बहुत अच्छा उसका। पर मेरे दिल दिमाग पर जो असर हुआ कि उससे पहले मैं थोड़ा बहुत कविता कहानी लिखती थी और वो छप रही थी राष्ट्रीय पत्रिकाओं वगैरह में, बहुत अच्छे आते थे पाठकों की प्रतिक्रियाएं। जब वो धारावाहिक की फीडबैक आने लगी, उन किशोरों ने ना अपनी जिंदगी का सारा जो कह सकती हूँ कष्ट है उन चिट्ठियों में उड़ेल कर रख दिया
0: जी।
1: आज भी वो मेरे पास चिट्ठियां हैं, तो हर जब मैं उनसे विशेषज्ञों की बात उनको बताती थी सुनाकर, तो वो बाद में मुझसे चिट्ठियां पूछते थे, उन सब की बात ठीक है पर दीदी आप क्या सोचती हैं, आप अपनी बात बताइए। तो मैं, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है सामाजिक चेतना की आप बात कर रही हैं
0: जी,
1: कि मैं नहीं वो आकाशवाणी है, मतलब उनकी कितनी गहरी आस्था इस लोक प्रसारण में है
0: जी,
1: है ना, कि वो चाहे विशेषज्ञ बता रहे हैं, एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं, स्कूलों के काउंसलर्स बता रहे हैं, हॉस्पिटलों के साइकेट्रिस्ट बता रहे हैं, लेकिन वो मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये जो एक गहरा रिश्ता श्रोताओं के साथ जब आप बनाते हैं, वो उनके दिल दिमाग पर असर करता है और उससे सामाजिक परिवर्तन होता है। सूचना और व्यवहार परिवर्तन के बीच में एक बहुत लंबा और बहुत संवेदनशील रास्ता है रिश्ता बनाने का, वो बना। उसके बाद डीजी ने कहा अब आप सेकंड एपिसोड बनाइए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आगे आप हमारी शादियां होने वाली हैं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रोताओं ने, तो आप हमें वैवाहिक संबंधों पे धारावाहिक बनाइए। तो मैंने जीवन सौरभ 2 बनाया। तो इसका सारा श्रेय मैं अपने सीनियर्स को देना चाहूंगी। पहली बात तो कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया
0: जी,
1: मेरी हर बात मानी। और दूसरा, उसी समय एक उप महानिदेशक थे, वो एक बहुत बड़ा नाम था लेखन में आकाशवाणी का, उनसे वो आलेख लिखवा के लाए, जो दहलीज हमने बाद में नाम दिया धारावाहिक को उसका। मैंने वो पढ़ा तो मुझे तो वो तोता मैना की कहानी जैसी लगी। अब मैं तो जीवन सौरभ बना चुकी थी जो असली
0: मुद्दे
1: हैं और उनकी जुबान से। हाँ, जीवन सौरभ के उस एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे बीबीसी वालों ने भी यहां से इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा सर ये तो मैं नहीं ले पाऊंगी। तो देखिए, उन्होंने एक बार भी इस चीज को अन्यथा नहीं लिया कि भाई तुम मेरी इतनी जूनियर हो और मेरे लाए हुए स्क्रिप्ट को मना करिए। तो सारा श्रेय उनका, क्योंकि क्या था, ध्येय था प्रसारण। तो फिर हमने लेखन करवाया उन दिनों में, त्रिपुरारी शर्मा थी, बहुत बड़ा नाम था उस समय उनका, बहुत नाटक की रंगमंच की रही है, तो उन्होंने लिखा 26 एपिसोड लिखे। पर उसने मुझे ये बताया कि हर विधा, हर माध्यम की अपनी एक जरूरत होती है। तो आकाशवाणी का लेखन और रंगमंच का लेखन दो अलग चीजें हैं। तो उस स्क्रिप्ट्स को काफी रिवाइज करना पड़ता था आकाशवाणी के हिसाब से
0: जी।
1: और फिर जो प्रतिक्रिया श्रोताओं की आई, तो मेरे लिए तो उससे ऊंची कोई चीज नहीं होती थी। तो ये आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है,
0: छोटा भारत है वो,
1: बिल्कुल छोटा भारत है
0: जी,
1: बिल्कुल ठीक
0: कहा। हम जो कहते हैं कि हमारा ध्येय वाक्य जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको असल में आपने बहुत ही आसानी से अपने कार्यक्रमों के माध्यम से चरितार्थ कर दिया।
1: मुझे लगता है आकाशवाणी की अगर आप मुझसे एक पूंजी पूछें
0: जी,
1: बहुत ऊंचे बहुत बड़े काम है आकाशवाणी के, राष्ट्र निर्माण में आकाशवाणी की भूमिका जो है ना वो अतुलनीय है। मैं ये कहूंगी कि लोक सेवा प्रसारण में और विकास संचार में विश्व के अत्यंत महत्वाकांक्षी और सफल प्रयोगों में आकाशवाणी है
0: जी,
1: और आकाशवाणी ने ये अर्जित किया है, बड़ी मेहनत से अर्जित किया है, और ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो श्रोताओं का विश्वास, उनका दिल जीत पाए, उनके दिलों की बातें की, उनके दिलों से जुड़ गए, तो ये बात होती है।
0: मैं यहां आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने रेडियो का बदलता हुआ दौर भी देखा है, क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि रेडियो किसी चुनौती का सामना कर रहा है?
1: समय तो बदलता है
0: जी,
1: आपका समय और हमारा समय, आज का डिजिटल युग सिर्फ तकनीकी की वजह से नहीं, पर तकनीक होने की वजह से चीजें बदलती हैं, समाज बदलता है। तो आज मैं सोचती हूँ जीवन सौरभ में वो जो मुझे इंटरैक्टिव करना होता था चिट्ठियों के जरिए, और पता बुकलेट्स छपवाई थी मैंने जीवन सौरभ दो के लिए, अगर सोशल मीडिया उस समय मेरे हाथ में होता तो मुझे ये सब मेहनत भी ना करनी पड़ती और सब तुरंत फुरत होता, तो शायद लोग ज्यादा अच्छे से जुड़ते। हर बदलते समय की अपनी मांग है, वो चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे संस्थागत जीवन हो या संस्था का जीवन हो, आपको बदलना होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है।
0: और आज के दौर में रेडियो की प्रासंगिकता जो है, मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्थान आप कहाँ पाती हैं?
1: सवाल ये है कि आप क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका प्रसारण कैसे करते हैं और श्रोताओं से कैसे जुड़ते हैं
0: जी।
1: आज आपके आगे चुनौतियां हैं, भाषा बदल चुकी है, लेकिन अगर आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसको नहीं बदलना है
0: जी,
1: जिन चीजों के लिए आपका मान सम्मान था, हमने ये भाषा जो बोल रही हूं मैं, ये मेरी भाषा नहीं है
0: जी,
1: मैं इसके साथ बड़ी नहीं हुई, ये भाषा हिमाचल की भाषा नहीं है, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज, पर हिंदी और तरह की हिंदी
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना, तो जो जिसकी वजह से आपका एक शिखर पर नाम था, लोगों ने उसको सुना, कितने हमारे डिप्लोमेट हैं, कितने बड़े लोग हैं जो युववाणी से बने हैं
0: जी,
1: तो उसको बनाए रखना है लेकिन परिवर्तन के साथ। जब रेडियो आया तो बोला जी अखबार खत्म हो जाएंगे, जब टेलीविजन आया कि रेडियो खत्म होगा, खत्म कुछ नहीं होता, आज सोशल मीडिया है, खत्म कुछ नहीं होता, इंसान की कम्युनिकेशन की नीड्स हमेशा रहेंगी, लेकिन बदलती तकनीक और इतनी तेजी से तकनीक बदल रही है कि उसमें आप अपने आप को बनाए रखना और अपनी आभा को बनाए रखना एक चुनौती है, और चुनौती ही तो नई चीजें करने के लिए
0: जी
1: आपको प्रेरणा देती है ना
0: जी। बहुत रोचक बातचीत आपसे रही और इतनी सारी बातें हमने सुनी है, आपके बहाने आज एक दौर को फिर से हमने जिया है, और क्योंकि हम यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, यही दरो दीवार हैं जिनसे हम रोज गुजरते हैं, जिनसे हमारा परिचय है, आपके बहाने आज हमने एक नए अंदाज में इनको देखा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को तो कुछ नया मिला ही है आपसे बातचीत करके, लेकिन हम प्रसारण कर्मियों को भी इस इंटरव्यू से बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ यादों को नहीं जिया है, आने वाले समय के लिए भी खुद को हम तैयार कर पाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि खुद को बदलना है लेकिन अपनी परंपरा को भी बनाए रखना है, उस संजीदगी को भी बनाए रखना है। चलते चलते कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
1: शमशाद बेगम का
0: जी,
1: गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांकरे,
0: हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांकरे।
3: नमस्कार श्रोता, मीडियम एपको 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलो हजमा हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज जेनी मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मार्फत पनि हजुरहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी उपस्थित भएका छौं आजको तेस्रो अधिवेशनमा समावेश कार्यक्रमहरूको साथमा। यो सुन्नुहोस् अब उसो प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त जानकारी। अहिले केही क्षणमा सुन्नुहुनेछ फौजी दोस्त के लिए कार्यक्रम सौर्यगाथा। 4:30 प्रस्तुत हुनेछ लेप्चा भाषाको कार्यक्रम तुङकुङ तुङलात, जसमा आज सुन्नुहुनेछ हेल्दमित लेप्चाको आवाजमा गीत भने त्यसपछि विश्व पर्यावरण दिवसको सन्दर्भमा वार्ता सुन्नुहुनेछ। 5:00 सुन्नुहुनेछ निम्बो भाषाको कार्यक्रम नुसीचान प्रस्तुत गर्नेछौ, जस अन्तर्गत आज सुन्नुहुनेछ प्रथममा समाचार अनि देवप्रसाद लिम्बुको आवाजमा गीत भने त्यसपछि विश्व पर्यावरण दिवसको सन्दर्भमा एक वार्ता सुन्नुहुनेछ। 5:30 प्रस्तुत गर्नेछौ सिक्किमे भूटिया भाषाको कार्यक्रम पांगेन मेन्तोक, जसमा सुन्नुहुनेछ देन्थेक अनि साथीहरूको आवाजमा गीत भने त्यसपछि एक वार्ता सुन्नुहुनेछ विषय रहेको छ वातावरण संरक्षणमा युवाको भूमिका। 6:00 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ हिन्दी भाषामा समाचार। त्यसपछि 6:05 आज प्रस्तुत गर्नेछौ लाइभ फोन इन कार्यक्रम, विषय रहेको छ पर्यटन विकासमा सिक्किम सरकारको पहिलो कदम। यस विषयमा आज हाम्रो स्टुडियोमा जानकारी दिन भनी उपस्थित हुनुहुनेछ एसटीडीसी गान्तोकका अध्यक्ष लोकेन्द्र रसैले। 6:40 सुन्नुहुनेछ यस केन्द्रको प्रादेशिक समाचार क्रमैले नेपाली लेप्चा अनि सिक्किमे भोटिया भाषामा। 6:55 अंग्रेजी भाषामा एक वार्ता सुनाउनेछौ। यसरी नै 7:05 प्रस्तुत गर्नेछौ नेपाली अनुरोध संगीत कार्यक्रम। 7:10 मिडियम वेभमा प्रसारण हुनेछ सरकारको 12 वर्षे कार्य अवधिमाथि तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम, विषय रहेको छ महिला सशक्तिकरण। यसरी नै 7:25 नेपाली भाषामा समाचार सुनाउनेछौ। 7:35 कार्यक्रम युवावाणी सुनाउनेछौ। त्यसपछि 8:00 कार्यक्रम लाइभ रेडियो ब्रिज सुनाउनेछौ। 8:45 अनि 9:00 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार। 9:15 स्पटलाइट कार्यक्रम भने 9:30 सुनाउनेछौ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट करेन्ट एफेयर्स कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, आकाशवाणी गांतोक से कार्यक्रम स्वरगाथा में आप सभी को सुनीता सिंह का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि दोस्तों, आज 5 जून है और आज के दिन को एक विशेष दिवस के नाम से जाना जाता है, जिसे विश्व पर्यावरण दिवस कहते हैं। दोस्तों, हम जहां जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी का जीवन हमारी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति के बिना हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। पेड़ पौधे, हवा, पानी और ऑक्सीजन हमारे जीवन के ऐसे आधार हैं जिसके बिना जीवन असंभव है। और जीवन को स्वस्थ रूप से संभव बनाने के लिए हमारे आसपास का वातावरण हरियालियों से भरा होना चाहिए। बातें हमारी और भी होंगी फौजी दोस्तों आपके साथ विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। उसके पहले आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: सफल।
1: फौजी दोस्तों, वातावरण को पूरे मानव जाति के लिए अनुकूल रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। प्रकृति ने तो हमेशा दिया ही है, लेकिन आज हम यह भूल गए हैं कि केवल हमें प्रकृति का दोहन ही नहीं करना, बल्कि प्रकृति को कुछ लौटाना भी है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस प्रकृति का समुचित लाभ ले सके। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, नेचर हैज इनफ टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड, जिसका मतलब है कि प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तो है, पर हमारी लालसा या लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आज हमारी लालच का ही ये परिणाम है कि हम सबके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है।
2: ओ, सजना।

फौजी दोस्तों, आज हम सभी निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें प्रकृति की रक्षा के लिए अपने जीवन चर्चा में कुछ बातों का अंगीकार करने के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें उनका यह विचार निश्चित ही अत्यंत उपयोगी एवं सहज प्रासंगिक लगता है कि हम अपने हर एक विशेष अवसर को वृक्षारोपण के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मना सकें। हम अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी वर्षगांठ या किसी भी विशेष अवसर पर एक वृक्ष समर्पित कर सहज रूप से मना सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से वरदान सिद्ध होगी।

0: फौजी दोस्तों, आपके साथ आज हमारी चर्चा का विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमारी उससे ज्यादा रक्षा करती है। प्रकृति के प्रति हमारी अज्ञानता भरी अनदेखी का परिणाम यही है कि हमें खुद भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह की बीमारियां, हवा पानी की शुद्धता से प्राप्त न होना, मौसम में अचानक से बदलाव, ये सभी हमारे अपने ही करने का दुष्परिणाम है जिसे हमें ही झेलना पड़ता है। मानव जाति ने हमेशा ही अपने इतिहास से शिक्षा ली है। इसी क्रम में हम आशा करते हैं कि समूची मानव जाति प्रकृति की अनदेखी एवं शोषण के प्रति जागरूक होगी एवं प्रकृति के साथ खुद को समायोजित कर एक नवीन और सुंदर ग्रह की रचना करेंगे जिसमें प्रकृति एवं मानव एक दूसरे के साथ सहज रूप से ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। बातों के बीच में ही आइए सुनते हैं दोस्तों कार्यक्रम का अगला गीत।
1: मिश्रा गालिब का है और कैफियत हर एक की।

नहीं अपनी, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है, एक हरकत करती हुई कैफियत।

हमें ये याद दिलाता है कि इसके प्रति हमारे भी जिम्मेदारियां हैं, नहीं तो हमें इसके अत्यंत दुष्कर परिणाम भुगतने होंगे। पर्यावरण का अर्थ सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में रहने वाले हर एक की यह जिम्मेदारी है कि जितना हो सके इसे बचाने की कोशिश करें, इसकी रक्षा और सुरक्षा करें। पर्यावरण हमारी जिंदगी का आधार है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज वर्तमान समय में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती का विषय है ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण। इसी से संबंधित लोगों में जागरूकता लाने के लिए इसे आज के ही दिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, ताकि हम अपनी धरती की वन संरक्षण की रक्षा कर सकेंगे।

tungkung tenglat matenchi rong tu pem nan long frit lung along lot dola goren chung sa kumdun ka vum sup punon arisa alun atan thamdun ka thungan mo thamdun sri sa thyak pe nyam chung sa tun ka kung pun jok rem lung kyo thushung kung pun jok kayu sa tun ka gyu gi cho atim kar go mo pun jok ni gong gun sa tun ka arim gum thambik tham chung fu fu yu fu kup gun sa tun ka la kung pun jok re adium gum un kung punjok azong ni gong wartola adium munchu harinan matba fat rut fiot lomla lungge shu kayunan lyang agun pongka kungku pong chokachu kayunan kung pong lom agyap mu phantola thukachu lyang kyung ka bambu morosong nan punjok lom agyap mu phanto pongla geshu syang pe kung thampot rimpot bifong pong un kung pongla আরে পঞ্জক লম দো থপশু পঞ্জক নি গং উংলাপ উংপং সন চং লম আরম থশু উংকিং উংকপ পংলা সন মখতনি আরে নন মাতবা জুং নন্লা আলোবা মুদুক মুদুক সা জুং সথুপে পংলা জুকথুমো সরেকা পঞ্জক রেম আরিও মাতন আজক জুকশং সতন কাগম কুম পঞ্জক রেম আজং উন লুংবছং সতন কা জুং নন্লা আগ্যাপ মু কমশে সং পং মনামো উলমদু সরং মিগদুমসা জুন ইয়ংনি ফাইভ জুন গোমো সরং সা সকিমকা সকদম পুবারলা বর্ত সা সকিম সুমশু সরং সকিমকা গন লিয়াং পংকা ইনথ পংকা উন অফিস পংকা গন কুংক পং থ্যাং শিবুসা আকাল ইয়শু ইনথ পংকা সরং সা সকিম আরেকা ছু অং সং নন মুদুক মুদুকসা মমি পং জুক নন আরে দো সা পংপিত পং থুশু উন আরে সা পংপিক কা গে বুরেম ছিল পংলা থি বু চান্ডিক মা থুমো উলুমদু সরং সা থুপি আরে কা মুদুক মুদুক সা বোম সা পংপিত পং উন মুদুক মুদুক সা আলেম পংপিত পংলা দুদু দুদু সা লিয়াং কা থুশু আলুমদু মালং সরং সা সকিম আরে সকদম পুবার কা গনলা আফিং আফং সুখি বু সা সকিম ইয়ংনি কুং পঞ্জক সুখি পোসা সকিম ইয়ংনি কুংকপ থ্যাংসি পোসা সকিম ইয়ংলা কৈনন কোখছু ফাইভ জুন আরে জুংনন জুকথুবু সকিম ইয়ংনি পকথুবু সকিম কাই কুমো সরং সকিম কা রেঞ্জুং কতাপ মুগুন সা সকদম পুবার কা ওয়ার্ত সা আপলং কা লিউনন ওয়ার্ত রেম আজগ আজং থুসং সতন কা সরং সকদম পুবার কা কুংকপ পং থ্যাংনন গনন আরে রেম সরং সা ওয়ার্থ সকিম ইয়ং সা সুলত সকিম সুগাম সুমা নগং সরং আরে সকিম চং পুম জুং সালা থপে কা নিয়াম সরে কা নিয়াম পা এক পের মা কি নাম ইয়ং লিন আরে গন আকব সং নন আমু সা আব্রিয়াম কা কুংকপুরে রেল থ্যাংসি বুসা আরে জংসা তুপি পংলা নিয়াম উন জুং নন্লা আকব কা জিক অং সা জো কাদেন লক কুংক পং থ্যাংসি বুসা রে জং সাথুপি পংলা জুকথুমো আলুম দো মা নন জুং পুম জুং শ্রে দু নন্লা দুদো সা লিয়াং কুং পুন জক পং রেম লুং বুৎ সং সতন কা ইয়ং নি ওয়ার্ত রেম গিয় সং সতন কা আগ্যাপ মু সুক বিয়াম মো সুমা নগু গং ওয়ার্ত আরিউম নি গং কয়ু নমশিম নিউ কতাপ মগুন সা থামবিক থামচিং পুন জক থামচিং ফুয়ু ফুকুপ গুন সতন কা আরিউম উন আজক মনছু তিংসং সতচুত কা গ্লোবল ওয়ার্মিং জংপু সা আরে জংপু আচুন পং কা আচুন পং নন মাত বা কয়ুনন আলং রে নন দো ওয়ার্ত রেম আজক আজং সৎবক মাছং আজাব দো আখু ইমো তিংসং তচুত কা কয়ুনন সিবি দোলা ং গং আজাব মু সুম আজত পং কা উন ল্যাং কিউং পং সতে ল্যাং কিউং পং কালা ং গং উং কিউং উং ক পং কা দ্যাম তু বু আরু রবর সা জুতা পং ফ্লম পং দম তুকলুক পং তঙ্গি পং উন মসুক মদক মদক সা আজেন থামলম পং দিয়ন থুপু কইনন সিমখছু সেনলা আরে রে আরিউম তো মুগুননি সরং তা কইনন দদো সা ছিলম কা সেতেত খুতেত বু জরতা মানন উদম দিয়ন গুরুংলা সিগিম কাট উরিনন কয়ুম কারিং লেন বুশু উরি রিং লেন দে সথালা আজক মুগুননি ল্যাংকা কৈনন উংচং উংক পংরেম সত বক ন মুথন গং রথিয়ত নন কৈসা ল্যাংচং পংরেম লংলক কছু
उदेत कताप मगुनसा ल्यांग्यूंग पोंग कला कई नस्ते दोला जोरता माथुबु प्लास्टिक सा पैकेट पोंग शिशु था तोंबु सा पैकेट पोंग कई नन योम नन शोक्षु उरे शोकंग सा कई सा वार्ता रेम येल अधिम जुकचु शुमान गु गोंग सते दोला कई न शोक तोंबु प्लास्टिक बैग पोंग का अजेंबु यंग ने रूम ला मुदुक मुदुक सा केमिकल पोंग नंग जुकतो बुंगुंचु उरे केमिकल पोंग रेम दो कई नन शोकंग सा तकल्यांग का नोंग नंग उरे दो सुदु मन सो सा लियो का लायंग सा उरे रम एसिड ड्रेन पोंग ला मुनखचु उरे लायंग सा कैसा सगदम गमि बाला खेंग सा थुक बी पोंग का अजुन गन खचु शुबान गोंग सते दोला कन थ्यांग तो बो तंग बीत सरेत पोंग शु दोला थामली पोंग थामलेन पोंग का अरेसा सो जो गोंग गोंग पचिबु तच का पोट मखत अन अधिक पोंग फाल्क लुवाम बु अरे पोंगला अरे एसिड ड्रेन यांगनी वर्तो लोक न नोंदित बु सा तन का लागुमो उथे कथा मुगुन सा सगदम का शुमलोत यांगनी ग्लोबल वार्मिंग जंपु सगदम का शुअम्बु यांगनी सुजोंग लाबो का हिम से तच का अरुम तो चोम शु अन अरुम तच का हिम चोंग अन बु अरे गनला ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेटिक चेंज ला लिंक छु अन अरे नन मत बा कई नन अरे रेम लोट दुला बैलेंस का थोशोंग से तन का कई नन लैंग क्यों का नियम बो से ते दुला थामशियम पोंग रेम जोम पंग बन दियन लैंग लैंग का दियन का छु अन सरोंग रे नन फिल कई नन उंग क्यों पोंग का दम तुक लोक पोंग लेम शोंग थामशियम पोंग लेम शोंग से थाला अरे जांसा योग पोंग कई नन मत मचुक ने का नि न लेम गम गोंग कई नन शोक दन का छु सथा फोक ते का कई से लैंग क्यों से मोरो पोंग मोरोसोंग कताप मुगुनसा मोरोसोंग सा सम नोंका अरे जंगसा सक्चिन मलातेत कैनन शुसरे जंगदोला युंग सतोपे पोंगजोकनाला पंतु शुला मयने अनन मातबा गनलेन नहान कैसा ल्यांग्यों का बंबू सतेदोला अनम इंग अन ल्यांग्यों सा गानबू सोंगनन अरे जंगसा सक्चिन यांगने अरे जंगसा यिनतने गनलेन नहान कैसा अयोंग का वानगत पु छगत पु अक्याप तो तिमशोक निमो शुमान गोगोंग अरे कसु तन का मुगुनी मोरोकात स तन का पांतोलुत स तन का मुगुनी नमशिम युल्योत न थाम्बिक थाम्चंग अमिक न शिवंबु यंग ने शिव मुकत बु थाम्बिक थाम्चंग फुयु फुकप गुन स तन करे अरे वर्तो अरिम थोशोंग रे अग्याप तो अखु निमो वर्तो रेम अजेन जुगलंग नोंगोंग सुम्यांग का प्लोशी बु से तेतुला अजेन बु नेट पोंग बक पोंग नला कैसा मुजुका चुक न मुदुक मुदुक स नेट पोंग लोंगजुक लोंगसो खचो अरेनन मतबा कैसा असु वार वार ला नियम्बु लीसा असु वार वार नियम्बु वार्तो पोंग्रमला सद बगनन अचोंग थोम गछु अलोंग सुलाम्यांग ngsa मुदुक मुदुक बु थाम्बिक कपोंग यंगने मंगोंग पोंग अन असर कैसा वी नसि बु चिकप चिकप थाम्बिक कपोंग ला प्लम खछु अरेनन सतेत अशेम पोंग जो थोबु आशेन का आति थो थोबु बु थोबु न मतबा कैसा मजु का चो गंसा मुदुक मुदुक सा नेट पोंग सो खछु सरे का सोजोंग रु अथ्याक दोक अन शासिबु अदोक पोंगला अन असर मुदुक मुदुक पु अदोक पोंगला मुन खछु तिंगसोंग तचे का याजांग मोचोमनी तिंगसोंग तचे का छुलोम न लातुंबु मुदुक मुदुक केमिकल्स पोंग ह्युलथुबु आजोम अथेन पोंग कैन जोबम अनन मतबा कैसा मुजुका नितोक ता मुनशु शुदुल थाम्बिक थामचुग न चुको मलाकदो मुजुका ने छखछु यागोंग कैसा थ्योंगयेकोंग अबु अमु सोंगनन ल्यांग कदो जुक थोबु सिंग न्यत पोंगा प्ले थोबु आजोम अथेन पोंग जोनु उतेत अदोक नेत पोंग नंगला जोन मखतनी अलोंग सतो चर का कयु ग्याप्शु फोम पोंग नन बाजार पोंग लम नन पान जो थोंबु न मातबा कैसा मजु का या स मरो सोंग जंग क्योको उतेत मुनिने अन मातबा सरे जंगसा आजोम अथेन कैन जोबम उरे जंग तो कैन दन दो सा वर्तवारेमला अरियम आजोम थोमगाछु अलोंग अरिरम अरिम अरिम वर्तोरम थोशोंगसा तन पोंग लोम लोम यु पोंग रे कयु न सथा दोला गनले नहान कैसा ली लोम न जेंग छु कैदो सा ली यांग ने मजु पोंग अजोम अथेन पोंग अचोंग जोशोंग थोशोंग अन दमद्याम दमकात पोंग ला अचोंग सद बक्षोंग छुशोंग अना करे ददो सा पलिक पोंग असु वर वर पोंग सद बक्षोंग उबिनन ददो सा ल्यांग का न्याम बो उंग क्यों उंग पोंग रेम सद बक थोशोंग लोम पोंग रेम सद बक थोशोंग अना करे सते दोला कैसा ल्यांग का न्योत मुजुक बु सतेत दोला बंजु न्योत इंगन बु पोंगरेम कयनन कुंग मथ्यांग दो कुरुंग कयना पे कुंग पोंग थामपोत्स कुंग पोंग थ्यांग नला कयनन वार्तोरेम लुंग्यो खछु
스테차 링코 니암쇼 량카 싱뽕가 궁탱공 본족 문쇼 본족 문공 본족사 담지응뽕 라트너 가이살리카 너똥소쿠추 은루톡뽕 럭크추 그래라 덩금 으사립과 그이는 다무다무 공봉 모족도 그롱라 지급지급 공공 배봉 족도도 그롱 으라 아핑 려령운추 으라 공타무사 류카도 그이음카 아야프무 와토렘 아즉은 아총 스스라 도시용카 등가 아야판도 문추 아리는 맛바 가유근은 수롱사 스님 아리카 컷마크도 그롱 끈급예삼 립도 그롱 아봉카 니탱느카 수롱사 그이는 와토 스님 아리렘 롱숭 릉 농가추 가이는 소롱 탱토부궁 남예삼카 가이스턴카 아리움부 아총부 아총습못보시부 아총 아솜보시부 궁봉갓 문분옹슈 궁름 그유는 융는라 모로송는라 슈마나 팀축 비밤고치네 궁레 가이스턴카 미스갓 고모 미스 츠츠 야니 라이프 고모 슈마나 고공 가이사 아갑쇼 티오총네 이암부 고암부 아링금 가이우는 슈토부 아솜 스레레 카본다이 옥사이드 살류카 궁롭는 리슈 은 궁는 스테트 돌라 아솜 슈토부 스레라 옥시젠 양 리슈 오레레 카이는 리슈 가이우사 츠롬카 옥시젠 마닌 공 가이우 주밤 마크니 아레난 마바 주밤 쇼스턴카 옥시젠 레 근린 아쿠문슈 은은 마바 아리 옥시젠도 가이사 츠므름금 아리레 츠므름레 공봉 공롭는 끄타본 거추 아레난 마바 가이우세테도 아즉 아종 주숑이 우테도 궁렘라 카이난 여톰가추 궁본족 카유난 스텟 남심 뉴사류카 직라 데응사 카이난 떵가추 후스캄 우임카 저탑가추 량춘가 밤부송난 카이난 빅사피 사르피 몬살리 빅살리 아레퐁 아나도도살리 퐁족바 병퐁족바 카이난 궁퐁 안토퐁 둠푸퐁 슈달라 코슈 아레퐁 카이난 본족람 떵가추 셴라 본족카 궁냠 팔리나 카이난 동메직 텔티엇 마축니 카유난 스텟 코텟 우테카탑티엇 브나 라데카추 아나카레 아레 용느 아레장사 토피 투암브레 용는라 궁본족 모티엇일리 퉁문인 용는라 쿠임카 뜨츠뜨츠카 코텟차 궁본족티엇 의영나 카이음카 아레장사 오르퐁 보통니 셴라 카이는 스테티엇투 우리레 아레장사 뜨츠달라링사 카이나카 우리 삭칭나카 궁봉카티엇토콩 머크도 그룹 카이나 궁봉 궁급플리퐁어레 카이는 탕도카추 울루마미공레 우리사 리플레이스멘카 양니 우리사 리코버랑 문카추 울음울릉 농바 그이는 궁본족렘 아류마느 양니 밸런스가 여릉 농슈 울음울릉 농사 그이살량가 아총 습뭇 스스라 아리장도 그이는 은 아독넷라 아만 문슈 은 스테드도라 특량놈라 치부 레토부 습뭇놈라 토부 스테드도라 아젠부 푸르드퐁 넥퐁 옐퐁 아리 궁롭느 퓨어나카 아리람 퓨리파이 마나카 카이움카 로돌라 아총 옥시젠 보시보 욕라 아레 쿵푼족난 마추 아레는 마바 스롱 스님퐁카 융누라 아기야무 아레 쿵급퐁 탱숑카 엔바이로먼 프로텍션 리암보 욕퐁 아리장보 무독무독사 익페르 마키남 아리장부서 투페퐁 융는 슉비느 융는 셰송 마느 량량카 판차이트 퐁럼 리느 오피스 퐁카 리느 인토 봉가 리느 융토 봉가 리느 아레장사 욕봉 량킹서 모로봉렘 에듀케이트 롱마느 인턴 비느 롱마담보서 튼 텐도크레 아레고모 아레난 마드바카요 근은 도도사 잉아봉렘라 근린나한 궁펀족 여숑사 립립카 도도사 밤통 좀통 량봉렘라 스스 토시부사 인턴 레 아용카 빌릉 농가치모 만공레 융누 스테드라 토페 봉족느라 량쿵사 렌퐁나라 스테드 렌간퐁나 리느라 카이나 비디오 퐁카 스테드 녜트느라 시느라 슈라비 판토미인모 근네나한데 카이도사 섬농럼다 아레 지클릉디카트모 알롬도 마른 그사 사탄 담든 아레렘 아비도통 롯돌라고 렌송소쿰든카 일다미 도미서 음니카 팅투보 봄서 보나르 통한모 세농오

वो मरिसा लिप लिप का सरोंग सतुंग कुंग तंग लात मतंची रोंग तो पेरे अदे दो का लुंग सोंग शो लोकल कोई तो सदारी दो का मधुक मधुक कोमार पोनन कोमार मोसोंग से अंगिम का थिंग तो बुवम से पोनार पोंग रेन सोंग से कुंदन का लाबला चिनी मो अलोंग अलोंग तो प्रत्येक का सोंग से तो पेर तार्जेंग उन्चो गनम अरिम सोना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन

0: इन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताहरूले हाम्रो यो प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एपबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, समय यस बेला साँझको 6:05 भएको छ र अब प्रस्तुत गर्दैछौ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रममा पर्यटन विकासमा सिक्किम सरकारको पहल विषयमाथि प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत फोन इन कार्यक्रम।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रीमती गुप्ता के कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आग लगने की घटनाओं

0: बिना मंजूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन और लोगों की जान खतरे में डालने वाले दूसरे मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए जिनके तहत दोषी पाए गए अधिकारियों के वेतन, पेंशन या संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में गुरुग्राम के जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार गुरुग्राम जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट।
1: DIPRO के अनुसार किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी संस्थानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता की जांच, आपातकालीन निकास व्यवस्था का निरीक्षण और फायर अलार्म सिस्टम तथा सुरक्षा प्रावधानों का सत्यापन किया जाएगा। DIPRO ने बताया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें। सकलेन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग के अनुसार घटना की सूचना सुबह 2:47 पर प्राप्त हुई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मौके पर 11 गाड़ियां भेजी और सुबह लगभग 7 बजे तक आग पूरी तरह बुझा दी गई। इस दौरान 2 दमकल कर्मियों को हल्की चोटें आईं जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने आज एक निजी ईवी टैक्सी कंपनी की गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में इस कंपनी की 1000 ईवी टैक्सी से सेवाओं की शुरुआत हुई है और अगले एक वर्ष में दिल्ली एनसीआर में इनकी संख्या 10,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज से शकूर बस्ती रेल सेक्शन का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं और प्रगति कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने शकूर बस्ती डिपो में कार्यरत कर्मचारियों, मेंटेनेंस स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों से संवाद भी किया। उत्तर रेलवे ने बताया कि श्री वैष्णव ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ रेल अधिकारियों को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से गौर करने तथा उनके त्वरित और समयबद्ध निवारण के लिए कड़े प्रशासनिक आदेश जारी किये। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के जखीरा अंडरपास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड के अधिकारी उन सभी जल भराव के प्वाइंट पर लगातार काम कर रहे हैं जहां पिछले वर्ष मॉनसून के दौरान जल भराव हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले मॉनसून को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को बारिश के दौरान कोई भी असुविधा न हो इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
2: दिल्ली में पिछली बारिश में जहां जहां हमको वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स मिले, हमारे PWD के अधिकारी, जल बोर्ड के अधिकारी निरंतर हर पॉइंट पर जाकर देख रहे हैं। सारी व्यवस्था अभी से हो चुकी है, हमारे सारे पंप स्टेशन, सारे अधिकारी और वो एकदम से मुस्तैद हैं।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसके पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर किए गए साइबर हमलों के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की है। बोर्ड ने बताया कि यह पोर्टल इस महीने की 2 तारीख को शुरू किया गया था जिस पर पिछले 3 दिनों में बार बार सुनियोजित साइबर हमले किए गए। एक रिपोर्ट।
3: CBSE के अनुसार इन हमलों की प्रकृति, पैमाने और सुनियोजित तरीके को देखते हुए उसने विस्तृत जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए ये शिकायत दर्ज की है। CBSE ने इस बात पर बल दिया है कि इन प्रयासों के बावजूद उसके सिस्टम और डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बोर्ड ने बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों की साइबर सुरक्षा टीम के सहयोग से लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से इन हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,300 14 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने मंगलवार को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में कमियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। 13 मई को 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद कुछ विद्यार्थियों ने प्राप्त अंकों से असंतोष व्यक्त किया था और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के अंतर्गत मूल्यांकन की सटीकता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रणाली के कार्यान्वयन और खरीद संबंधी पहलुओं की समीक्षा शुरू की। जवाबदेही और विश्वास निर्माण उपायों के अंतर्गत बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया और प्रशांत लोखंडे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि JEE एडवांस परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि JEE एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत बनाए रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया, जबकि नीतिगत रेपो रेट को तटस्थ रखा गया है।
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% और वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार सुगमता लाने और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ भी किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है। उन्होंने नागरिकों से न केवल पेड़ लगाने बल्कि उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए पोषित और संरक्षित करने का भी आग्रह किया।
5: दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। नमो पार्क को दिल्ली को समर्पित किया गया है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक पेड़ मां के नाम पे जरूर लगाएं। आपके द्वारा ये किया गया कार्य पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा होगा।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष राजधानी में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर बल दिया।
6: 15 लाख पेड़ इस साल लगाने हैं। सैपलिंग हम देंगे, जगह भी बताएंगे, पर पेड़ सब मिलकर के लगाएंगे। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑक्सीजन पार्क पे काम शुरू हो गया है। हम लोग इस बार पॉल्यूशन रिलेटेड सभी मेजर्स पहले से ही ले लेंगे। हम ऑलरेडी दिल्ली की सभी सड़कों को वॉल टू वॉल कार्पेटिंग के लिए प्लान कर चुके, इससे सड़कों से धूल हटाने में मदद मिलेगी।
0: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर

0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉ मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
1: Observing that World Environmental Day, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji.
2: हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से पर्यावरण की रक्षा और उसे बेहतर बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने हमेशा पर्यावरण के महत्व पर जोर दिया है और देश को इसके प्रति जागरूक किया है। हमें पानी बचाना है, पेड़ लगाने हैं और लगाए गए पेड़ों की देखभाल भी करनी है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से ही आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।
1: एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन अगले महीने की 31 तारीख तक खुले रहेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। और अब बात मौसम की। राजधानी में आज पूरे दिन धूप रहने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज

0: सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था। आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और ये स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट दिए जाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान की भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने